0: तुम कुफा भी
1: सूतु सुखसाने ने रजगले मंदे मंदी तुम्हारे माता का इसके आराम पिसले तुम सब तुम चुपला रहे म्याना का तीन म्याना का काम रहे इतनी म्याना के अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क है जान कौन को रिस्क है जान को वाह ये जन बाते जान मंदी तुम्हारे माता का इसके आराम है ये जन बाते रिस्क सां पा ना जब फिक्री जान मु उतन C'est un peu de temps.
2: C'est une autre chose, c'est une autre chose, c'est une autre chose, c'est une autre chose.

0: गिलास तुम कफा भी
1: अलक्षण नम खास कसाने भगवान या ते अंदे इचे ब्लॉक सही इचे ट्रोंग यू सेजन ते ना प्रोग्राम नाई वा तो से कुस्ते मनाबुल वाते सही ना लोगा ना सकाफ़ ते सेजन सफ़ी ते नहीं वा नो ट्रोंग फ़ैलाम्बुल नहीं जाने वचानो हम नहीं मिस सकेला ना करूँ आ ते फ़ैलाम्बुल नहीं वचानो मना वो इचे ते सही मेरे किस ते मलो श्याम नोर्ती ते अर्गा फिर सही ते मना बोटा पापांग सही जोने तो मियो
2: हम सो फिफु ना चालो ते सही आओ ना तुम तो कचान नहीं फाते मजाना का संताय मजेन आओ ना तुम तो कचान तोल मनो फिर सुम चागा चागा जान जाए सुम फोक जाए चमोनिन आओ जाए मनो जे मफान पांग फुन ना या ते मने तनान माला कासरे चारे मनो वो चुनाई कुरा ब्रामियत वा ते सही नहीं बाई ते तो नहीं वे इंगा नहीं बाउसी सना तोलू फोक कर ये चा उसालामा तोलू चु सालामा सो चतु
3: फाफ कयान वा आफा का मुंजे चिक पनुत चिक मिला फी बेपान अंतान चिक हाउक चिकी बेपक Ira fi de rana fon de nai fana teli nai rats mati andre ni rans tul so rem fa ira te am ni ra to tsutsu ta fa tsika nge zo fa na mam soni msona firine tsika sa tsika fa la tsaka lal tsika
4: ro kra bo kata mo son de nan de fa semba an tsiti an ro fa ki ve ro tanam ba an ro na to son ba fa nan ba an ro ka fa ni mo mas na fa ta te na Zaka mood, and it took a phone away. So, no, it's almost any Arab. It's much in room, be full mood, the Simba, Skelemin, but Rana told me to have another little bit of time. So, the other thing, the kid with Chelsea, who took back to Kelba and one. Rani Kalambul was another day. Nimi Fava was only as a Tom, so.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: बस तुमको वाह भी
1: तीम ने रसोम नी इसा तब कलू ती मंदिकेल ती तब का ती मंदिकेल तब का ती मंदिकेल ती निवाले फितु लपन लकान रन समाई ता फाउला ने मिचा वचले चिर का पोका रन सारे ना मिले उल इसा ना लाव सो ओजो ओम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरंभ ये फमिशा चाहूता का मिचो याद का पोका वो तेसामी फाउला ने ताल भी फितु लपन लकान अब शोए अमान ले तेले स्टार्स पच्ची माना मिले वे चिरामान तो कुन्या पीन पिचेसन तार ने अम्नुलना अम्नि अमाना ले उलना रे तेले स्टार्स फाइ चिर का पोका वे फाउलन तो कुन मंदिंग क्या मिचो माला काश मालोना से सावन मिचा हम सो वचन ने कि तोफ तो वना ये चिरु अम्नि ता जावना तुम चुसी वे तेरा तेरे वे मंगो माना सुआ फोक सेम फन मिलना तुल चिर तु Patukum tunggal senal dia malah kasma lo nasi sama misa jadi sangat ini tan seruaman nulan siraman soye.